0: साइकिल।
1: तूने तूने चलाई X440 की? नहीं चलाई, ये बता, कल चलाएगा ना? आई थिंक यू लाइक इट। तो आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन आई वाज बिल्डिंग हर, तो पहले मेरे को

0: When I got into Goa yesterday, I went on a whirlwind ride around North Goa with Bobby Singh of Old Delhi Motorcycles. You know, the whole Sholay vibe. Super fun. Bobby builds custom motorcycles and made a sidecar for the X440 in 2023. He had good things to say about that motorcycle.
1: तूने चलाई X440 की नहीं चलाई कल चलाऊंगा ना आई थिंक यू लाइक इट तो आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन आई वाज बिल्डिंग हर तो पहले मेरे को वही सब प्रेजुडिस थे कि इट डजंट क्वाइट लुक और फील लाइक एन हार्ली इट्स टू स्मॉल एंड